ओम चतुर्मुखाय विद्महे हम सरुधाय धीमहे तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात।